कभी दफ्तर में लोग एक दूसरे को तवज्जो दिलाते हैं कि काम ठीक से करो क्योंकि साहब का मूड खराब है, तो कभी घर में माँ बच्चों से और बच्चे एक दूसरे से कहते फिरते हैं कि जरा बच के, अब्बू का मूड खराब है। कुछ लोगों का मूड वक्ती तौर पर खराब होता है और कुछ का तो हर वक्त ही खराब रहता है, लेकिन इस मूड की खराबी को ठीक कैसे किया जाए। कराची के साउथ सिटी अस्पताल में माहिर नफ्सियात डॉक्टर फैसल ममसा ने मूड बेहतर करने के गुर बताते हुए कहा कि सबसे पहले तो पाकिस्तानी न्यूज चैनल देखने से इज्तनाब किया जाए क्योंकि इन पर सिवाय मनफी खबरों के और कुछ नहीं दिखाया जाता। उनका कहना था कि अगर हालात जानने की गरज से अखबार पढ़ना नागुजीर हो तो सिर्फ सुर्खियां पढ़ ली जाएं, खुसूसन मनफी खबरों की तफसील पढ़ने से गुरेज किया जाए। डॉक्टर फैजल ममसा ने मजीद कहा कि रोने धोने वाले ड्रामे न देखे जाएं, बल्कि उनकी जगह कोई ऐसी चीज देखी जाए जो आपको खुश करे। उनके बकौल इससे भी बेहतर सरगर्मी किताबें पढ़ना है, चाहे वो साइंस के बारे में हो या अदब से मुतालिक हो। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानियों में वर्जिश का रिवाज बहुत कम है। वर्जिश करने से न सिर्फ जिस्म सेहतमंद रहता है बल्कि साथ ही साथ इंसान नफ्सियाती तौर पर भी हशाश बशाश रहता है। डॉक्टर साहब का कहना था कि आजकल लोग अपना बहुत सारा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फेसबुक और ऐसी ही दूसरी समाजी राबते की वेबसाइट्स पर सिर्फ मनफी चीजें पोस्ट करते हैं। ऐसे लोगों से बचा जाए क्योंकि मनफी सोच एक से दूसरे को बीमारी की तरह लगती है। उनका कहना था कि मनफी लोगों से मिलना जुलना भी कम ही रखना चाहिए और शायस्ता अंदाज में उन्हें बता देना चाहिए कि वो कितनी ज्यादा मनफी बातें करते हैं, ताकि वो आपको अपनी मनफी बातों से मायूस करना छोड़ दें। और ये याद रखना चाहिए कि जो लोग मुस्तकिल आप पर तनकीद करते रहते हैं वो आपके दोस्त नहीं। अमरीकी जदीद साइकोलॉजी टुडे के एक हालिया मजमून 10 क्विक टिप्स टू इम्प्रूव योर मूड में भी ऐसे मूड को अच्छा रखने के तरीके बताते हुए मनफी सोच रखने वाले लोगों से बचने का मशवरा दिया गया है। मजमून में कहा गया है कि खुश रहने वाले लोगों से मिलना जुलना चाहिए ताकि उनके खुश रहने की आदत खुद को भी मुतासर करे। जरीदे के मुताबिक हंसना, मुस्कुराना माजी के पछतावे और मुस्तकबिल की परेशानियों के बजाय हाल की किसी मजबूत चीज के बारे में सोचना, दूसरों की तारीफ करना और उनकी जिंदगी में दिलचस्पी लेना, डार्क चॉकलेट खाना और सब्ज चाय पीना भी मूड को अच्छा रखने में मदद देता है। अरबिक नगमा गुलाम अली की।

मैं सोने पर दुखी था और वो न सोने पर। वो हर कहानी के अंजाम से बाखबर जागती थी, मैं कहानी के अंजाम से बेखबर सोता था। बेखबर लोग सोते हैं। कहानी सुनते सुनते सो जाने वाला आज कहानियां लिखने लगा है। आज मुझे भी दादी अम्मा की तरह दुआएं मांगने पर भी नींद नहीं आती। जागने वाले तख्लीककार बन जाते हैं। खुदा भी नहीं सोता, कायनात तख्लीक कर दी। साहिबों, जिंदगी इंसान का बहुत मजाक उड़ाती है। जब हम जिंदगी के सांचे में ढलने लगते हैं तो ये अपना आप बदल लेती है और उस रुख पर पड़ी नजर आती है कि जिस रुख पर हम इससे बहुत मुख्तलिफ नजर आते हैं। जब हम जिंदगी को हथेली पर रखे मौत की ख्वाहिश में दर बदर भटकते हैं और जिंदगी की खैरात लौटा देना चाहते हैं तो जिंदगी उस वक्त बड़ी शान बेनियाजी से आगे बढ़ जाती है। और जब हम थक हार कर आखिर जीने का फैसला कर लेते हैं और जिंदगी पर हक जताने लगते हैं, जिंदगी की जरूरत महसूस करने लगते हैं, जिंदगी को अपना समझने लगते हैं, जिंदगी की खैरात से कुछ इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उस वक्त जिंदगी अपना रंग दिखाती है और शान बेनियाजी को झुटलाते हुए कमजर्फ बन जाती है और जिंदगी की खैरात एक ऐसे वक्त पर छीन लेती है जब उसकी अशद जरूरत होती है। ये मजाक नहीं तो और क्या है। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो दादी अम्मा सुकून की नींद सो रही थी। मैं बहुत खुश हुआ दादी अम्मा को सोता देखकर, मगर घर और मोहल्ले वाले उनकी चारपाई के इर्द गिर्द जमा होकर रो क्यों रहे थे। दादी अम्मा की दुआ कबूल हो चुकी थी। सच है, खुदा जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि जिंदगी आप पर कोई राज खोले और आपको उसकी कीमत ना चुकानी पड़े।

0: जले तो जलाओ गोरी, पीत का अलाओ गोरी, अभी ना बुझाओ गोरी, अभी से बुझाओ ना। पीत में बिजोग भी है, कामना का सोग भी है, पीत बुरा रोग भी है, लगे तो लगाओ ना। गेसुओं की नागिनों से, बैरनों अभागनों से, जोगनों विरागनों से खेलती ही जाओ ना। आशिकों का हाल पूछो, करो तो ख्याल पूछो, एक दो सवाल पूछो, बात जो बढ़ाओ ना। रात को उदास देखें, चांद को निराश देखें, तुम्हें जो ना पास देखें, आओ पास आओ ना। रूप रंग मान दे दें, जी का ये मकान दे दें, कहो तुम्हें जान दे दें, मांग लो लजाओ ना। और भी हजार होंगे जो के दावेदार होंगे, आप पर निसार होंगे, कभी आजमाओ ना। शेर में नजीर ठहरे, जोग में कबीर ठहरे, कवि थे फकीर ठहरे, और जी लगाओ ना। जले तो जलाओ गोरी, पीत का अलाओ गोरी, अभी ना बुझाओ गोरी, अभी से बुझाओ ना। है तलाश जिसकी सबको। बाप ने खाने की मेज पर अहले खाना से बुझारत पूछी कि वो क्या है जिसकी हम सबको तलाश है। तहकीकी इदारे भी उसी को हासिल करने के लिए सरगर्दा हैं, मौकेकीन उसी की खोज में खाक छानते हैं, समंदरों की गहराइयों में गोताजन होते हैं और खलाओं में कलाबाजियां लगाते हैं। सवालात की आखिरी मंजिल भी यही है। मजाहिब आलम भी उसी को अपनी बुनियाद करार देते हैं। जराइम की तफ्तीश का हदफ भी यही एक लफ्ज है और अदालतों के फैसलों का मरकज भी यही है। तालीम और तालीमी इदारों का निचोड़ भी यही है। बड़े बेटे ने कहा दौलत, मंझले ने कहा इज्जत और संझले ने कहा रिस्क, बेटी बोली इल्म, अहलिया ने कहा सब्र, बाप ने कहा आपकी कोशिश का शुक्रिया, वो लफ्ज है सच। यही पूरी कायनात की जान है। तमाम तावीलें ताबीरें सहरंगेज तकरीरें हुस्न बयान और मशक्क़तें बेकार और रायगां हैं अगर वो सच से खाली हैं। सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है और आखिरी फतह उसी की होती है। है तलाश जिसकी सबको, ये तहरीर थी तारिक हनीफ की।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एहसन खान, आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने इंतहाई अच्छे मेजबान आबिद अली बेग के साथ। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।
0: क्या आप मुलाजमत की तलाश में और सोच रहे हैं कि आपको रोजगार से मुतालिक रहनुमाई या मदद कहां से मिल सकती है? लेबर डिपार्टमेंट पूरे शहर में 10 जॉब सेंटर्स चलाता है जहां मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को बिल्कुल मुफ्त खिदमात फराहम की जाती हैं। आप किसी भी जॉब सेंटर में ताज़ा तरीन खाली आसामियों की मालूमात हासिल कर सकते हैं। आप वहां मौजूद एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर से मुलाकात करके अपनी रोजगार की जरूरियात पर बातचीत भी कर सकते हैं और ऐसे खसूसी रोजगार प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जो आपकी मुलाजमत हासिल करने की सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। खसूसी तौर पर आप रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं जिसके तहत नस्ली अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को रजिस्टर्ड सोशल वर्कर के जरिए केस मैनेजमेंट के अंदाज में एक ही जगह तमाम रोजगार मुआविन खिदमात फराहम की जाती हैं। लेबर डिपार्टमेंट अंग्रेजी और चीनी जबान में खिदमात फराहम करता है। अगर आप अंग्रेजी या चीनी नहीं बोलते तो महकमा आपके लिए मुफ्त तर्जुमान की सहूलत का इंतजाम भी कर सकता है। मजीद मालूमात के लिए लेबर डिपार्टमेंट की इंटरेक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस की वेबसाइट पर नस्ली अकलियतों के लिए मखसूस सफ़ा मुलाहिज़ा करें www.jobs.gov.hk/em یا انٹریکٹو امپلائمنٹ سروس موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. ورکنگ فیملی الاؤنس اسکیم مختصراً ڈبلیو ایف اے درخواست کے لیے کھلی ہے. درخواستیں گھریلو بنیاد پر دی جاتی ہیں اور گھر کے ارکان کا ہانگ کانگ کا رہائشی ہونا ضروری ہے. ایک گھرانہ بشمول سنگلٹن گھرانہ جو کام کے اوقات کی اور اثاثوں اور آمدنی کی حدود کی ضروریات کو پورا کرتا ہے الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے. ایک درخواست دہندہ ایک ہی مہینے کے اندر ایک سے زیادہ با معاوضہ ملازمت کے اوقات کار بشمول کل وقتی اور جز وقتی ملازمتوں کے ادا شدہ اوقات کار کی اطلاع دے سکتا ہے. اسکیم کے تحت گھر کے تمام ممبران کے کام کے اوقات کو اکٹھا کیا جاتا ہے. نان سنگل پیرنٹ گھرانے جن کے ماہانہ کام کے مجموعی اوقات 144 گھنٹے سے کم نہ ہوں بنیادی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 168 گھنٹے سے کم نہیں ہے تو گھر والے درمیانی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں, اور اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 192 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہیں تو گھر والے ہائر الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. گھریلو آمدنی کے مطابق الاؤنس پورے ریٹ 3/4 کی شرح یا نصف شرح پر دیے جاتے ہیں. فل ریٹ کا بنیادی الاؤنس $1,150 فی مہینہ ہے. فل ریٹ میڈیم الاؤنس $1,380 فی مہینہ ہے. ایک فل ریٹ ہائر الاؤنس $1,610 فی مہینہ ہے. گھر کے ہر اہل بچے کو چائلڈ الاؤنس بھی مل سکتا ہے. مکمل شرح ہے $1,610 فی مہینہ فی بچہ. ڈبلیو ایف اے گھرانے ایک ہی وقت میں کمپریہنسو سوشل سیکورٹی اسسٹنس کی امداد حاصل نہیں کر سکتے. اپریل 2026 سے مارچ 2027 تک کے کلیم کے مہینوں پر لاگو آمدنی اور اثاثہ جات کی حد اور اہلیت کے مطلوبہ معیار کی تفصیل ڈبلیو ایف اے اسکیم کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں, جس کا پتہ ہے www.gov.hk. مزید معلومات کے لیے درخواست گزار اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں یا ہاٹ لائن کو کال کر سکتے ہیں, جس کا نمبر ہے 2558-3000 2558-3000.